संत हो, सतगुर खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो। रहाओ।

राम नर हर निदान जिन कै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याणा।

तुझे पछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया।

शांत। प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे।

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरु।

सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे भावै साचा। किस कारण रह तजो उदासी किस कारण इहो भेख निवासी। किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत भए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधारो।

सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें ओए भाणे चलन अपने नित झूठो।

शब्द रवै सब घट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहे जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है पुलावै कौन जिस है पुलाई पंध सिर तिस है दिखावै कौन महला पहला।

पौड़ी मनमुख मोगुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोले अंतर प्रगास

पौड़ी। जो तद पहाणा जंत सो तद बुझई, जो तद पहाणा जंत सो दरगह सिझई। जिसनों तेरी नजर हो मैं तिस गई, जिसनों तू संतुष्ट कल मल तिस खई।

पंजवा कबीरा हमरा को नहीं, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हूं के ना है जिन्हें हो रचन रचाया, तिस ही माहे समाहे पौड़ी, सफल्यो बिरख सुहावड़ा हर सफल अमृता, मन लोचै उन मिलन को क्यों वंजै कित।

लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल इहे

पाठी पियो महारस पारी। काम क्रोध द्वय किए जलेता छूट गई संसारी। प्रगट प्रकाश ज्ञान गुर गम्मत

जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चली, सतगुर

जहै दूजै भरम भुलाई हे। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की देव गुरमत जाती।

नार पुरख नहीं जात ना जन्मा, ना को दुख सुख पाएंदा, ना तद जति सती बनवासी, ना तद सिद्ध साधक सुखवासी।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जोग जोग

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख।

पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द हर नाम चित लाए। मन तन हर रविया कट अंतर, मन भीने भगत सलाहा। मेरा प्रभु साचा असुर संहारन।

आनंदन गुण रव है दिन राती, आनंदन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है सिमरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाओ चुकाया।

कुसंगत बह है सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रव है दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उड़ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार।

गुण निदान मानतन महरवया, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिरस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग में।

नाम सोलह कला संपूर्ण फलया, सोलह कला संपूर्ण फलया, अंत कला हुए ठाकुर चढ़या।

अविनाशी अवगत अगोचर सब सब किस तुझ ही है लगा। श्री रंग वैकुंठ के वासी मछ कछ कूर्म।

वाकखरां शराशरयत लेकम्मावहो त्रिकत तर्क खोज टोलावहो मारफत मन मारहो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

दरियाओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाई लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग महना

हर अगम अगाधा निःचल नाम निधान है जिस सिमरत हर लाधा। निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

सच कर खोज लहे साचा गुर थानो, मन मुख नह पाई गुरमुख ज्ञानो। देवै सचदानो सो परवानो, सदाता वडदाना, अमर अजोनी अस्थिर जापै साचा महल चिराना।

रहाओ। पूर रहया सर्वत्र मैं सो पुरख विधाता, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। संतन संग जाता पुरख विधाता, घट घट नजर निहाले।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तर तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

गुरमुख जाता से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया नानक से पूरे वड भागी

बाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़

जाने दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत कर है दिन राती दुविधा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच बसिया मन सोई मूर्ख दुविधा पढ़ है।

कोई जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिसकै नेड़ै कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, तू जल थल महियल।

सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीर्त हर सुनने, जिन हर नाम सुनया मन पीना, तिन हम सिरे वह नित चरणे, जग जीवन हर ध्याए तरणे, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाही जिहवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावहो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ, जम मार्ग कै संगी पांथ, गंगा जल गुर गोविंद नाम।

ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भव जल फेरा।

पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचय नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

अंत अपूछे, राज हमारा सद ही निःचल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमारी।

गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साब तरास उबरया। पाखंड भरम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख

ओडा कूप गोज खिन काढ़ जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ त्यों सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन

मन भूलो परमस आए जाए अत लुब्ध लुभानो बिखम माए नहे अस्थिर दिसै एक पाए ज्यों मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझ ससाच नाहीं गुर शब्द विचारे सहज पाए।

भय अभिमान न जाई, लख चौरासी ही जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिरज समाए, सगली भूलै।

सहज अवल धूड़मणि गाडी चालती, पीछे तिनका ले कर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती, सर धोवन चाली लाडली रहाओ, तो भी तो वह बिरह बिराता,

मऊ तिस अर्पण सब सुख जाई। एक निमुख प्रदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवों दिन रह नाई। मान अभिमान हों सगल त्यागो जो प्रै बात सुनाई। देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई। प्रभ रंग दयाल।

एक नाम कलमल दग्ध होहे खिन अंतर कोट दान इशनान कलमल दग्ध होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाव आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर भोकट ज्ञान।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, अन दिन भगत सुहावी, मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग

तीर्थ अठसठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड नेत्री सत्संगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

ताई नानक ललाट होवै जिस लिखिया तिस साधु तूर दे हर पार लंघाई मलार महला चौथा तिस जान को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा।

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन धरै

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जगत तरावै रहाउ, जो गुर पौ जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अगे।

अनक बार ब्रह्म है बहुजोनी, एक न काहूं धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंग है कत सागर, कागर नाव लंग है कत सागर, वृथा कथत हम तरते। शिव विरंच असुर सुर जेते, काल

कान हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

ब्यासा, ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावे गो, जो जो भगत होए सो पूजहो, परमन परम चुकावे गो, जात न जात देख मत परम हो, सुख जनक

भाव भगत सरोवर उछले सुपार भरे बहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर।

चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जात है सुख।

सबला नित उठ उठ जूझ मिरकरी जय। काम क्रोध नगर महंस बला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करो रख ले वहो गुर पूरा काढ़ कढ़ी जय। अंतर अगन सबल अत बिखिया।

फिर शाहा वड पुरख स्वामी रहाओ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराए अमृत नाम मन रहया अगह।